और अब उसी ने पाया तो वो ना ही होगा गई त्या कना यगन पुबुसी कतंगन तकुना आं के इस सोना को गे इस सोना को में यान मैं उंगा तबुकी तैयार करारा पा कोन मैं उरे मो आते तैयार हुआ और सिरे तमंदे तबने को ऑनलाइन में ये नहीं तब मैं उरे फ्रॉम 89.9 आई ओ कोन मरे को तंगेरी आं के इस सोना को आ मेरो या काइंटे तकुरु बुनाने ने ते तेरा ना ते वना सक मैं उरे नंगराई

हाँ ने दो रे क्या हमने हम की कमरा या मैं ना डॉन दाने ने रे दे पहला निकोना ये ने वस वस ने कोना यकीन ना ने कि हम करम पाई स्पंदी में तो ना पंगा ये और मैं और एफएम में चिनान बॉय नाइन मैं रहता ही है तो वही मैं तेरे वाले जमीनी साये पोने पे तो पोई ना तेरे आंकोर से ना मुशरा ये करवाने तेरे का यो सेना तीमें तो ना कुकुरा इरिकी ते तबे बुई इरिकी जमीनी सारा अर्थात ये सेना कमें और ये नोरा ना कुंडे याने ने तो यो ना क्या ना कुना कुंडे वाले चेदी बुई मैं कुना ना पा ये बुके नुवा नम ताई रिक्या यो के माइंड पॉइंट बुई ना देसना मुझे रोये